0: सिद्धिनेश्वर मंदिर में दर्शन करना आने हुने भक्त सन्हर में हार्दिक अनुरोध
1: विभिन्न धर्मावलम्बी को साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजापाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य और कला, संस्कृति पर्यटन विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जन पक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।